0: सालों से काम किया है, आप हमेशा मेरी तरफ वफादार रहे हैं और आज मैं आपसे एक बिनती करने वाला हूँ। मन्नू चाचा अपने मालिक की तरफ देखता है और बोलता है, क्या है साहब? मालिक मन्नू चाचा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मन्नू चाचा, ये एक आखिरी घर है, छोटा सा प्यारा सा घर है और मैं चाहता हूँ कि आप इस घर में कारपेंट्री अच्छी तरह से करें। आप करोगे ना, ये आपका आखिरी काम होगा, प्लीज मुझे मना मत करना। मन्नू चाचा बड़े दुखी हो जाते हैं। वो चाहते थे कि वो रिटायर हो जाएं, सुख शांति से अपने घर में बैठे रहें और ये फिर से उनके मालिक ने उनके बुढ़ापे में फिर एक और काम कर दिया। मन्नू चाचा मुस्कुराते हैं और घूमते हुए चलते हैं उस नए घर की तरफ, पर मन ही मन में वो बड़बड़ाते हैं, मेरा आखिरी दिन था फिर भी मुझसे काम करा रहे हैं, और गुस्से में जाते हैं उस नए घर की तरफ। और जैसे तैसे दिन गुजरते हैं और मन्नू चाचा बिना अपने इंटरेस्ट के जैसे तैसे कारपेंट्री ख़त्म कर देते हैं। बाहर से तो कारपेंट्री अच्छी दिखाई देती है, लेकिन कारपेंट्री उतनी बढ़िया नहीं रहती और ये मन्नू चाचा भी जानते थे। मन्नू चाचा गुस्से में थे, रिटायर तो होना था, ज़बरदस्ती काम कर रहे थे। अब क्या होता है, मालिक ये घर देखने आते हैं मन्नू चाचा के काम कंप्लीट होने के बाद, और मालिक एक चाबी का गुच्छा निकालते हैं। मन्नू चाचा काफी देर तक चाबी का गुच्छा देखते हैं। मालिक चाबी का गुच्छा निकालते हैं और मन्नू चाचा के हाथ में देते हैं और कहते हैं, मन्नू चाचा, ये आपके ईमानदारी का इनाम है, मैंने ये घर और यहाँ की कारपेंट्री सब आपको तोहफे में देने के बारे में सोचा था और ये रहा आपका तोहफा, ये घर, ये सुंदर सा प्यारा सा घर आपके नाम। मन्नू चाचा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, वो दंग रह जाते हैं कि मालिक ने इतना बड़ा तोहफा दिया। शर्म से उनकी आंखें लेकिन नीचे झुक जाती हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। हमारे साथ भी जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम समझते हैं कि टेक फॉर ग्रांटेड करना चल जाता है, जिंदगी चलती रहती है, पर ऐसा नहीं होता। कुछ इम्पॉर्टेंट चीजों में टेक फॉर ग्रांटेड करना बाद में नुकसानदेही हो जाता है। तो ये थी हमारे आज की कहानी की प्यारी सी सीख। कहानी टाइम, कहानी टाइम।
1: इन अ वॉइस मिसकॉट एग्नेल रेडियो।
2: कहानी टाइम। वंस अपॉन अ टाइम a daughter complained to her father that her life was miserable and that she didn't know how she was going to make it. She was tired of fighting and struggling. Just as one problem was solved, another one soon followed. Her father, a chef, took her to the kitchen and made her sit there. He filled 3 pots with water and placed them all on a gas with a high flame. Once the water began to boil, he put potatoes in one pot, eggs in the second one, and coffee powder in the third pot. He let them boil without uttering a word to his daughter. The daughter moaned and impatiently waited, wondering what he was doing. After 20 minutes, he turned off the gas burners and took the potatoes out of the pot and placed them in a bowl. He pulled the boiled eggs out and placed them in another bowl. He then ladled the coffee out and placed it in a cup. Turning to her, he asked, "Child, what do you see?" "Potatoes, eggs, and coffee," she hastily replied. "Look closer," he said, "and touch the potatoes." She did and said, they have become

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: Liscott Agnail Radio.
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: जो अगस्त 1942 था, भारत राष्ट्रवादी उत्साह की चपेट में था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें अंग्रेजों को तुरंत देश छोड़ के जाने के लिए कहा गया था। बंबई की हलचल भरे सड़कों से लेकर बिहार की ग्रामीण गांवों तक स्वराज या सेल्फ रूल की पुकार पूरे देश में गूंज उठी।
1: महात्मा गांधी के लीडरशिप में हजारों भारतीय ब्रिटिश राज के विरोध में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने लाठीचार्ज, सामूहिक गिरफ्तारियां और क्रूर कार्रवाई का सामना किया, लेकिन उनका हौसला कायम रहा। द रेवोल्यूशनरी स्लोगन डू और डाई बिकेम द रैलिंग क्राई फॉर अ नेशन डिटरमिन्ड टू गेन इट्स इंडिपेंडेंस।
0: अंग्रेजों ने पूरी ताकत के साथ मार्शल लॉ को इम्पोज किया और उसकी बाद हुई हिंसा में कई फ्रीडम फाइटर्स मारे गए, यातनाएं दी गई और जेल में डाल दिए गए। फिर भी भारतीय लोगों ने डरने से इनकार कर दिया और अपनी सविनय अवज्ञा और अहिंसक प्रतिरोध जारी रखा।

0: माला की भारत छोड़ो आंदोलन अंत में दबा दिया गया, लेकिन ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1947 में अंग्रेजों के पास हार मानने और भारत को आजादी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। द सैक्रिफाइसेस एंड स्ट्रगल्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट पेव द वे फॉर इंडिया टू बिकम अ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट नेशन।
1: ये भारत छोड़ो आंदोलन की याद में एक विशेष कार्यक्रम था जो भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था।

0: अगले सप्ताह हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
1: अपने देश से मोहब्बत करें, स्वस्थ रहें। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
0: विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।

0: और ये फिर से उनके मालिक ने उनके बुढ़ापे में फिर एक और काम कर दिया। मन्नू चाचा मुस्कुराते हैं और घूमते हुए चलते हैं उस नए घर की तरफ, पर मन ही मन में वो बड़बड़ाते हैं, मेरा आखिरी दिन था फिर भी मुझसे काम करा रहे हैं, और गुस्से में जाते हैं उस नए घर की तरफ। और जैसे तैसे दिन गुजरते हैं और मन्नू चाचा बिना अपने इंटरेस्ट के जैसे तैसे कारपेंट्री ख़त्म कर देते हैं। बाहर से तो कारपेंट्री अच्छी दिखाई देती है, लेकिन कारपेंट्री उतनी बढ़िया नहीं रहती, और ये मन्नू चाचा भी जानते थे। मन्नू चाचा गुस्से में थे, रिटायर तो होना था, ज़बरदस्ती काम कर रहे थे। अब क्या होता है, मालिक ये घर देखने आते हैं मन्नू चाचा के काम कंप्लीट होने के बाद, और मालिक एक चाबी का गुच्छा निकालते हैं। मन्नू चाचा काफी देर तक चाबी का गुच्छा देखते हैं, मालिक चाबी का गुच्छा निकालते हैं और मन्नू चाचा के हाथ में देते हैं और कहते हैं, मन्नू चाचा ये आपके ईमानदारी का इनाम है, मैंने ये घर और यहाँ की कारपेंट्री सब आपको तोहफे में देने के बारे में सोचा था, और ये रहा आपका तोहफा, ये घर, ये सुंदर सा प्यारा सा घर आपके नाम। मन्नू चाचा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, वो दंग रह जाते हैं कि मालिक ने इतना बड़ा तोहफा दिया। शर्म से उनकी आंखें लेकिन नीचे झुक जाती हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। हमारे साथ भी जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम समझते हैं कि टेक फॉर ग्रांटेड करना चल जाता है, जिंदगी चलती रहती है, पर ऐसा नहीं होता। कुछ इम्पॉर्टेंट चीजों में टेक फॉर ग्रांटेड करना बाद में नुकसानदेही हो जाता है। तो ये थी हमारे आज की कहानी की प्यारी सी सीख। कहानी टाइम। कहानी टाइम।
1: Inner Voice, Miss Carlton, Agnell Radio.
2: Kahani Time. Once upon a time, a daughter complained to her father that her life was miserable and that she didn't know how she was going to make it. She was tired of fighting and struggling. Just as one problem was solved, another one soon followed. Her father, a chef, took her to the kitchen and made her sit there. He filled 3 pots with water and placed them all on a gas with a high flame. Once the water began to boil, he put potatoes in one pot, eggs in the second one, and coffee powder in the third pot. He let them boil without uttering a word to his daughter. The daughter moaned and impatiently waited, wondering what he was doing. After 20 minutes, he turned off the gas burners and took the potatoes out of the pot and placed them in a bowl. He pulled the boiled eggs out and placed them in another bowl. He then ladled the coffee out and placed it in a cup. Turning to her, he asked, "Child, what do you see?" "Potatoes, eggs, and coffee," she hastily replied. "Look closer," he said, "and touch the potatoes." She did and said, "They have become soft." He then asked her to take an egg and break it. After pulling off the shell, the egg had become hard. Finally, he asked her to sip the coffee. The rich aroma brought a smile to her face. She felt better with a sip of the lovely coffee and asked her father, "Dad, what do you want to tell me?" He then explained that the potatoes, the eggs, and the coffee beans had each faced the same adversity, the boiling water. However, each one reacted differently. The potatoes went in strong, hard, and

0: और मैं घर पर अकेली बैठी बोर होती हूँ। घर पर अकेले बोर होने से अच्छा है कि मैं नौकरी कर लूँ।
1: मगर सुधा,
0: अगर मगर कुछ नहीं, आपको इस हालत में देखकर मैं भी चाहती हूँ कि आपकी मदद करूँ, न सिर्फ घरेलू रूप से पर आर्थिक रूप से भी। अजी, हमने विवाह के दिन 7 फेरों के साथ यही तो कसम खाई थी कि कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, चाहे वो सुख हो या दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़े, हम कभी नहीं घबराएंगे। हम हिम्मत के साथ एक दूसरे का जिंदगी भर साथ देंगे।
1: तुम ठीक कहती हो सुधा, मुझे तुम्हें पहले ही नौकरी करने की इजाजत दे देनी चाहिए थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज से हम दोनों मिलकर इस घर को चलाएंगे।
0: सच में?
2: सुधा एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते उसे नौकरी तलाशने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई। घर की परिस्थितियों में सुधार आने लगा। अब सब कुछ ठीक होने लगा है। सिद्धार्थ और सुधा ने मिलकर पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने कुछ ही समय में बल्लू भाई के सारे पैसे लौटा दिए।
3: दोस्तों, आज हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जो दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, परंतु घर की परिस्थितियों, परिवार वालों का दबाव और समाज की परंपराओं ने उन्हें बांध रखा है। हमारे देश में आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं को संपूर्ण आजादी नहीं दी जाती। समाज उन्हें एक अलग नजरिए से देखता है। उनका मानना है कि महिलाएं सिर्फ घरेलू कामकाज करने में सक्षम हैं, पर यह सच नहीं है। यदि हम उन्हें पूरी आजादी देते हैं तो वे दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर दिखेंगी। भारत की अनेक महिलाओं ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, मैरी कॉम, पीटी उषा और ऐसे अनेक भारतीय महिलाओं ने न केवल अपनी पहचान बल्कि अपने देश भारत की पहचान भी दुनिया के कोने तक फैलाई है।
4: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
5: ममता की मूर्ति मदर तेरेसा की जीवन कथा पर प्रकाश डालने के लिए आपको ले चलते हैं यूरोप के क्रीमिया शहर।

0: अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
1: अब मैं पहले से ठीक हूँ। आप नाइटिंगेल की फ्लोरेंस है ना? मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। काश आप जैसी कोई मेरे भारत देश में इस तरह की सेवा करती।
0: मैंने भारत के स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है, वहाँ के योगियों और मुनियों के बारे में भी सुना है।
1: अंग्रेजी हुकूमत ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया है। यदि आप भारत जाती तो अपनी आंखों से देखती कि वहाँ कितनी गरीबी है, गुलामी का नरक। आपको वहाँ जाना ही होगा।
0: जी, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी।
2: लेकिन अफसोस की बात, जख्मी सिपाहियों की सेवा में निरंतर लगी हुई फ्लोरेंस का भारत जाकर गरीबों की सेवा करने का सपना साकार नहीं हुआ। 14 अगस्त 1910 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल इस दुनिया से विदा हो गई। इस घटना से मात्र 13 दिन बाद यानी 26 अगस्त 1910 को मानो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अधूरे सपने को साकार बनाने हेतु मैसिडोनिया के स्कोज नामक गांव में श्रीमान निकोला बोजाक्सियू और श्रीमती ड्राना बोजाक्सियू के घर में एक नन्ही सी बालिका का जन्म हुआ।
3: देखो देखो, कितनी सुंदर बच्ची है यह।
4: वाह, कितनी प्यारी है। इसका क्या नाम रखा जाएगा?
5: इसके माता पिता ने इसका नाम आग्नेस गोंसा रखा है।
3: गोंसा का मतलब जानती हो? पुष्प की कली, अधखिली कली। आग्नेस गोंसा बोजाक्सियो,
6: फूल की कली।
2: धर्म परायण माता पिता के लाड प्यार में वह बालिका आग्नेस हंसती खेलती हुई ज्ञान और भक्ति में बढ़ती गई। आग्नेस के पिता मकान बनवाने की ठेकेदारी करते थे, साथ साथ खाद्य सामग्रियों की दुकान भी चलाते थे। सन 1918 में उनकी मृत्यु के बाद परिवार का सारा बोझ आग्नेस की माँ राणा पर आ गया। सादगी का जीवन जीते हुए गरीबों की मदद करने की बुनियादी सीख आग्नेस ने अपनी माँ राणा से पाई। सन 1920 विश्व युद्ध जोरों से चल रहा था। चारों तरफ युद्ध का हाहाकार मचा हुआ था। युद्ध के कारण पीड़ित गरीबों और भूखों के प्रति 10 साल की छोटी आग्नेस के दिल में अपार दया उमड़ आती थी।
7: लीजिए चाचा जी, आप भी लीजिए, और आप आगे आइए, आप भी लीजिए।
8: बेटी आग्नेस, युद्ध के कारण चारों तरफ खाने पीने की चीजों की बड़ी कमी है बेटी। कल के लिए भी कुछ बचा कर रखो बेटी।
7: माँ, आपने बाइबल में यीशु का कथन नहीं पढ़ा है कि कल की चिंता मत करो, आज की चिंता आज के लिए पर्याप्त है।
8: अब बाइबल का उदाहरण देकर मुझे परेशान मत करो आग्नेस। युद्ध चल रहा है, चलो घर अंदर चलो।
7: माँ, ये शक्तिशाली राजा महाराजा लोग युद्ध क्यों लड़ते हैं? क्या परमात्मा ने उनके लिए पर्याप्त चीजें नहीं दी हैं?
8: बेटी, उन्हें सत्ता की भूख है और दूसरों की धन दौलत पर उनकी निगाहें गड़ी हैं।
7: इस दुनिया में हर एक प्राणी की जरूरत की पूर्ति के लिए पर्याप्त चीजें हैं, लेकिन किसी की भी लालच की पूर्ति के लिए दुनिया का सारा धन दौलत पर्याप्त नहीं है। माँ, आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं गरीब देशों में जाकर अमीरों और गरीबों के बीच की इस बड़ी खाई को पाट दूं।
8: आग्नेस, तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो?
7: माँ, पिछले रविवार को गिरजाघर में एक सिस्टर से मेरी मुलाकात हुई थी। मैं भी उनकी तरह सिस्टर बनना चाहती हूँ।
8: बेटी, तुम हमें छोड़कर जाना चाहती हो?
7: माँ, मेरी दिली तमन्ना है कि मैं दीनहीनों की सेवा करूं और उनके लिए अपना सब कुछ समर्पित करूं, ताकि प्रभु ईश्वर जो प्रेम है उनके प्रेम की रोशनी गरीबों तक पहुंचा दूं।
8: आग्नेस, तुम्हारी बातों से लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें विशेष कार्य के लिए भेजा है, फिर भला मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ।
6: सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें।
9: आमीन।
6: आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति आपके साथ रहे।
9: ईश्वर को धन्यवाद।
10: प्रणाम फादर एंथोनी विजेक।
11: आओ अग्निस बेटी, मेरे चचेरे भाई ने तुम्हारे बारे में मुझसे कहा था, तुम क्या चाहती हो बेटी?
10: जी फादर, पिछले इतवार को जब मैं यहाँ चर्च आई थी तो इंडिया के एक मिशनरी फादर आए थे।
11: हाँ हाँ, उनका नाम है फादर जेम ब्रिमवोटिक। वे इंडिया के बंगाल मिशन में काम करने वाले जेजुइट मिशनरी हैं।
10: फादर ब्रिमवोटिक बता रहे थे कि वहाँ बंगाल में लोग इतने दुखी, इतने गरीब और बीमार हैं। सुनकर जी भर आया फादर।
11: तो तुम क्या चाहती हो बेटी?
10: फादर, मैं बंगाल जाकर उन गरीबों की सेवा करना चाहती हूँ। बताइए फादर, इसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा?
11: इसके लिए क्यों ना तुम आयरलैंड की लोरेटो समाज की सिस्टर लोगों से मिलो। वे लोग भारत के बंगाल में काम करती हैं। बंगाल के कलकत्ता में वे स्कूल चलाती हैं।
10: बंगाल, कलकत्ता, बंगाल मुझे बुला रहा है, वही मेरी मंजिल है। बंगाल, कलकत्ता, कलकत्ता।
2: फादर एंथोनी से सारी जानकारी हासिल करने के बाद 17 साल की उम्र में आग्नेस ने अपने माता से स्पष्ट कह दिया कि मिशनरी जीवन व्यतीत करने के लिए वह घर छोड़ना चाहती है। आग्नेस की माता को बेटी का यह निर्णय सुनकर अपार दुख हुआ, लेकिन धार्मिक विचार की श्रीमती ड्राना बोजाक्सियो ने आग्नेस को अनुमति दे दी। 18 साल की उम्र में आग्नेस दुनिया के माया मोह को अलविदा कहकर ईश्वर और उनके लोगों की सेवा करने के लिए 26 सितंबर 1928 को आयरलैंड की राजधानी डबलिन में स्थित लोरेटो कॉन्वेंट में भर्ती हो गई।
12: बेटी आग्नेस, प्रभु यीशु का शक्तिशाली हाथ तुमको थाम लेगा। तुम अपने हाथ को उसके हाथ में दे दो, उसके साथ चलो और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना।
2: रोम द्वारा संत घोषित की गई लिस्यु शहर की लिटिल फ्लावर तेरेसा से प्रेरणा लेकर आग्नेस ने तेरेसा नाम लिया। एक वर्ष में तेरेसा ने अंग्रेजी भाषा सीखी। इस दौरान वह भारत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करती रही। चूंकि लोरेटो सिस्टर्स पहले से ही कोलकाता में काम कर रही थी, इसलिए तेरेसा को भारत पर ढेर सारा साहित्य पढ़ने के लिए मिला। इन दिनों डबलिन में आग्नेस की मुलाकात रामकृष्ण मिशन के दो साधुओं से हुई।
13: आप
10: विवेकानंद जी के शिष्य लग रहे हैं। मैंने विवेकानंद जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है।
14: नमस्कार, आम्रा ओनारी शिष्य आछी। आमी रामकृष्ण मिशन दी होची।
10: विवेकानंद ने शिकागो में जो संदेश दिया है वह मेरे हृदय की गहराई में प्रवेश कर गया है। हाउ कैन रिलीजियस फेथ, कास्ट, क्रीड एंड कल्चर डिफरेंशिएट द प्रोजनी ऑफ द सेम फादर? व्हाई अ ब्राउन और ब्लैक स्किन पर्सन बी लेस ह्यूमन? सच, परम पिता की संतानों में धार्मिक विश्वास, जाति, संप्रदाय क्यों भेदभाव करता है? सांवले और काले रंग के लोगों को मानस से कम क्यों आका गया है?
15: खूब भालो, आप हमारे देश के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। अच्छा, चलते हैं। नमस्कार।
13: जय मां काली बोल रे बाबा मोने चोख खोल रे बाबा। जय मां काली बोल रे बाबा मोने चोख।
10: विजिट, मैं इनके देश भारत का सपना रोज देखती हूँ। मुझे वहाँ जाने का मौका कब मिलेगा?
16: तेरेसा, तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? मैं तो सुनती हूँ कि वह नरक है। वहाँ के लोग छुआछूत और न जाने किस किस तरह की पाबंदियाँ रखते हैं।
17: हाँ बहन, सुनते हैं कि यह हिंदुस्तान इतना गंदा देश है कि वहाँ लोगों की नजरों के सामने से गंदगी और बदबू हटने का नाम ही नहीं लेती। तेरेसा, वहाँ मत जाओ, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगी।
10: यदि भारत की स्थिति इतनी दयनीय है तो वही मेरी कर्म भूमि होगी। मैं वहीं जाऊंगी। हे प्रभु, मेरी मदद कर।
2: तीन अन्य बहनों के साथ सिस्टर टेरेसा ने दिसंबर 1928 के प्रथम सप्ताह में जहाज से बंगाल की ओर अपनी यात्रा का आरंभ किया। 6 जनवरी 1929 को सिस्टर टेरेसा और उनकी सहेलियां कोलकाता के बंदरगाह पहुंच गईं। वहां से वे दार्जिलिंग गईं। उन्होंने दार्जिलिंग लोरेटो नव शिष्यालय में 2 वर्ष का आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, साथ साथ बंगला और हिंदी भाषाओं को भी सीख लिया। 2 वर्ष के प्रार्थनामय वातावरण में भी टेरेसा का हृदय गरीबों के साथ था। वह अपने प्रभु को गरीबों के बीच खोजती रही। 25 मई 1931 को टेरेसा ने प्रभु के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया।
10: मैं सिस्टर टेरेसा ब्रह्मचर्य, निर्धनता और आज्ञा पालन का व्रत लेकर लोरेटो धर्म समाज के संविधान का निष्ठापूर्वक पालन करने का व्रत लेती हूँ।
2: 24 मई 1937 को 27 साल की उम्र में सिस्टर टेरेसा ने लोरेटो समाज की साध्वी के रूप में प्रभु के लिए अपना आजीवन समर्पण कर दिया। तब से वह मदर टेरेसा कहलाने लगी। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देश में सूखा और अकाल पड़ा।
10: हे प्रभु, क्या मेरा कार्य क्षेत्र इस विद्यालय प्रांगण तक ही सीमित है? नहीं नहीं, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, मेरा मार्ग प्रशस्त करो। प्रभु, शक्ति दो मुझे।
18: माँ माँ, हमें भूख लगी है।
19: माँ माँ, कुछ खाने को दो ना।
20: हाँ माँ, हमें खाना दो ना।
10: मेरे पास बस यही एक रोटी बची है, इसे ही तुम सब मिलकर खा लो।
21: ये रोटी मुझे दो। नहीं नहीं, ये रोटी मुझे दो।
22: नहीं नहीं, ये रोटी मुझे दो, मैं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है।
23: नहीं, मुझे दो रोटी, ये मेरी है।
10: हे प्रभु,
23: मुझे दो।
10: अभी तो इन नन्हे बच्चों की भूख नियंत्रित है, उग्र नहीं है, लेकिन उस दिन क्या होगा प्रभु, जब इनकी भूख असहनीय हो जाएगी। हे प्रभु, इन दीनहीनों को आपकी आवश्यकता है, कृपया मदद कीजिए।
2: 1946 में कोलकाता ने भी हिंदू मुस्लिम दंगे की पीड़ा सही।
24: मार डालेंगे, मेरे भाइयों को भी उन्होंने मार डाला है। मुझे बचा, मुझे बचा।
25: खुदा के लिए रुक जाइए।
26: हम इसे नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे इसे।
25: क्या बिगाड़ा है इसने आपका?
26: आप बीच में मत पड़िए।
25: देखो भाई, तुम भी इंसान हो और ये भी इंसान है। सबका एक ही धर्म है, इंसानियत, और हम सबका सिर्फ एक ही मालिक है। कोई उसे खुदा कहता है तो कोई भगवान। रास्ते जुदा हैं, मगर मंजिल तो एक है ना। तो फिर हम रास्तों पर खून क्यों बहाते हैं? किसी को जीवन दे नहीं सकते तो लेने की कोशिश मत करो बेटा।

0: बहन जी आप ठीक बोल रही हैं, अब ऐसा नहीं होगा। हमें माफ कर दीजिए बहन जी, हमें माफ कर दीजिए।
1: खुदा आपको जरूर माफ करेगा। आप लोग सुनिए, जो मुसलमान हैं मेरे साथ कॉन्वेंट के अंदर चलिए। कॉन्वेंट के पीछे की दीवार फांद कर आप लोग मोती झील जाकर रहिएगा। इधर बाजार होकर जाने में खतरा है। और आप लोग में से जो हिंदू हैं, कॉन्वेंट की दाहिनी तरफ की दीवार फांद कर टेंगरा की तरफ जाइएगा।
2: मदर, आप इन लोगों को कॉन्वेंट के अंदर ले जाकर दीवार फांदने में मदद करेंगी?
1: सिस्टर ब्रिजिट, बाहर दंगा चल रहा है। हमारा सबसे बड़ा फर्ज इनका जीवन बचाना है। इसके लिए चाहे कॉन्वेंट की निरर्थक परंपराओं को ही क्यों ना तोड़ना पड़े, इसकी जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। देखिए, बरामदे में 300-400 बच्चे और औरतें घायल हैं। उन सबके लिए खाने की व्यवस्था कीजिए और आप लोग मेरे साथ आइए।
3: 10 सितंबर 1946 को तेरेसा अपनी सहेलियों के साथ दार्जिलिंग लोरेटो कॉन्वेंट में वार्षिक आत्मिक साधना में भाग लेने के लिए ट्रेन से सफर कर रही थी।
2: देखिए सिस्टर तेरेसा, लगता है कि दार्जिलिंग नजदीक आ रहा है।

0: ये कब्बे नहीं होते तो ये दुनिया और भी खूबसूरत होती। नहीं, ईश्वर ने दुनिया को इस तरह नहीं बनाया, उसने तो केवल स्वर्ग की सृष्टि की है, हम ही ने इसे नरक में बदल दिया है।
1: तेरेजा, इस नरक को स्वर्ग में बदल दो। जाओ, गरीबों की सेवा करो, दरिद्रों में सबसे दरिद्र जो है उनकी सेवा करो। मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं।
0: ये मेरे प्रभु यीशु की आवाज है। हे प्रभु, तू प्यासा है, तू मुझसे क्या चाहता है प्रभु? बस आज्ञा दे प्रभु, मैं तेरी दासी हूँ। ये विदेशी महिला है, बड़े अच्छे और भले लोग लगती हैं। ये लोग हिंदुस्तान में क्या कर रही हैं?
2: ये नन कहते हैं, मिशनरी है मिशनरी। ये लोग भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करके ईसाई बना देते हैं। बच के रहना।
0: ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपका क्या नाम है?
3: मेरा नाम मणिकलाल चट्टोपाध्याय है। जात से हम उच्च कुल के ब्राह्मण हैं। ये मेरी धर्म पत्नी ममता चट्टोपाध्याय हैं। आपका नाम?
0: जी, मेरा नाम सिस्टर टेरेसा है और ये मेरी बहनें हैं। हम लोग कोलकाता के एंटली के लोरेटो कॉन्वेंट में रहती हैं। अभी दार्जिलिंग जा रही हैं।
3: क्या के लिए? वहाँ कितने लोगों को आप ईसाई बना रही हैं? हाँ?
0: ऐसी कोई योजना नहीं है, हम लोग अपने एनुअल रिट्रीट के लिए जा रही हैं।
3: यहाँ बढ़िया से साफ करो।
4: जी बाबूजी।
3: हाँ, आपने क्या कहा? एनुअल?
0: हर वर्ष हम 8 दिनों की आध्यात्मिक साधना करते हैं। उन दिनों हम मौन रहेंगे, प्रार्थना करेंगे।
5: गंदा लड़का, इस लड़के ने गंदा कर दिया मुझे।
6: मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई।
5: अब फिर से नहाना पड़ेगा, लेकिन दार्जिलिंग पहुंचने के बाद ही नहा पाऊंगा। भाग यार, ठीक आता है गंदा जानवर, भाग।
0: नहीं, यहाँ आओ बेटा, बैठो यहाँ।

0: मैं बंगाल जाकर उन गरीबों की सेवा करना चाहती हूँ। मैंने गरीबों की सेवा के लिए घर त्यागा था, लेकिन मैं क्या बन गई? स्कूल की प्रिंसिपल बनने के लिए मैं सिस्टर नहीं बनी थी। मेरा मकसद इंसानियत की सेवा है। लोरेटो कॉन्वेंट के अंदर सुविधाओं से संपन्न जीवन जीते हुए मैं गरीबों की सेवा कैसे कर पाऊंगी? मुझे गरीबों के बीच रहना होगा।
1: मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दो। मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दो। मैं घायल और बीमार हूँ, मेरी सहायता करो। मैं जात धर्म आदि के कारण ठुकराया हुआ हूँ, मुझे आसरा दो। जो कुछ तुम दीन दुखी और ठुकराए लोगों के लिए करोगे, मेरे लिए करोगे। तेरे सा मैं प्यासा हूँ, तेरी सेवा का मैं प्यासा हूँ।
0: सिस्टर ब्रिजिट, प्रभु यीशु की पुकार बार बार मेरे कानों में गूंज रही है। मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ,
2: मैं प्यासा हूँ। मदर तेरेसा, आपको पानी चाहिए?
0: पानी की प्यास की बात नहीं है सिस्टर, ये तो प्रभु की प्यास है।

0: जो मेरे अंतरात्मा में गूंज रही है। प्रभु ने मुझसे बातें की सिस्टर। मदर, मुझे कॉन्वेंट से बाहर जाकर गरीबों की सेवा करनी है। आप मुझे कॉन्वेंट छोड़ने की आज्ञा देंगी ना?
1: सिस्टर, क्या आपको यकीन है कि आप यह कर पाएंगे?
0: मैं अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं कर पाऊंगी मदर, लेकिन मुझे यकीन है, मेरे पास यीशु मसीह का विश्वास है। इस अनजाने पद पर मैं अपने को प्रभु की मर्जी पे छोड़ रही हूँ।
1: लेकिन सिस्टर, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप यह कैसे कर पाएंगे?
0: मदर, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरे लिए जीवन का मकसद यही है। मैं दीन दुखियों की सेवा के लिए सिस्टर बनी थी।
1: लेकिन सिस्टर तेरेसा, आपने हमारे स्कूल में गरीब बच्चों को भी दाखिला दिया है ना? उन्हें हम क्रिसमस के अवसरों पर खाना कपड़ा वगैरह देते हैं।
0: नहीं मदर, मेरा मतलब आप समझी नहीं। गरीबों की सेवा के लिए गरीबी का एहसास करना जरूरी होता है। उनके दुखों को महसूस करके उसे अपनाना जरूरी होता है। और वो काम मैं यहाँ कॉन्वेंट के अंदर रह के नहीं कर सकती, यूं सीमाओं में बंधकर नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से बाहर जाना ही पड़ेगा मदर।
1: क्या तेरेसा, आपको लोरेटो छोड़ना अच्छा लगता है?
0: नहीं मदर, बिल्कुल नहीं। मुझे अपनी माँ और भाई बहन से अलग होते समय इतना दुख नहीं हुआ जितना लोरेटो की मेरी धर्म बहनों से अलग होने में अब होगा। मैंने यहाँ आप लोगों के साथ पूरे 20 वर्ष बिताए हैं मदर।
1: जब प्रभु परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है तो मैं आपके रास्ते परोड़ा बनने वाली कौन होती हूँ? आपको कॉन्वेंट से बाहर जाने की अनुमति के लिए मैं कलीसिया के अधिकारियों से निवेदन कर सकती हूँ।
0: धन्यवाद मदर।
2: तेरेसा के आत्मिक सलाहकार फादर वैन एक्सएम ने इस कार्य में उनकी सहायता की। फिर तेरेसा ने रोम के अधिकारियों को एक खत लिखकर अनुमति मांगी। 1948 में संत पापा पियूस 12वें ने उन्हें एक वर्ष की अनुमति प्रदान की। 18 अप्रैल 1948 को सिस्टर तेरेसा ने लोरेटो सिस्टर्स वाले पोशाक को त्याग कर भारतीय वेशभूषा को अपनाया। नीले बॉर्डर वाली सफेद सूती साड़ी, जो कलकत्ता महापालिका की सफाई कर्मियों की वर्दी थी, कंधे पर क्रूस, हाथ में बाइबिल, जेब में मात्र 5 रुपए, किंतु मन में असीम विश्वास और साहस के साथ वे दरिद्रों की सेवा में तत्पर हुई। सिस्टर तेरेसा पटना की ओर रवाना हुई ताकि नर्सिंग का प्रशिक्षण लेकर बीमारों की सेवा कर सके। 6 महीने का गहन प्रशिक्षण लेकर वो 1948 में कोलकाता लौट आई। वही कोलकाता शहर जहां अपराध, हिंसा और अत्याचार का बोलबाला था।
3: मेरी चाले, ये ले पान के दहला।
4: तो फिर ये ले गुलाम।
3: अरे ये ले बादशाह।
5: सरदार,
4: क्या हुआ सलीम?
5: सरदार, आपने जैसा हुक्म दिया था सरदार, मैंने वह कागज इस सेठ के घर के फाटक पर चिपका दिया।
4: किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं?
5: अरे सरदार, रात के अंधेरे में कौन देखेगा मुझे?
4: ठीक है, अबे सेठ के बच्चे, घबराओ मत, तुम्हारे घर वाले 5 लाख रुपए लेकर आते ही होंगे। पैसा हाथ में आते ही हम तुम्हें छोड़ देंगे।
6: भैया कुछ दे दो, भैया बहुत मेहरबानी होगी भैया।
7: बाबूजी, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबूजी।
6: बहुत जोरों से भूख लगी है।
7: अंधे का आशीर्वाद लगेगा बाबूजी, कुछ दे दो बाबूजी।
6: भैया कुछ दे दो बाबू। बहन जी,
7: भगवान के नाम पे कुछ दे दो।
6: दामों के आग से बहुत पानी गिर रहा है।
0: बहनों, तुम लोग इन्हें अस्पताल ले चलो। मैंने झुकी के सभी घरों में खबर दी थी कि वह बच्चों को यहाँ भेज दें ताकि मैं उन्हें पढ़ा सकूं। लेकिन मैं उन्हें पढ़ाऊंगी कहाँ? अच्छा, आप लोग जाइए, जगह मैं ढूंढ लेती हूँ।
4: पैसा लाई हो?
0: पैसा? कैसा पैसा?
5: 5 लाख रुपए, इससे छुड़ाने की फिरौती की रकम, समझी?
0: अरे बेटा, मैं ये झोपड़पट्टी के गरीब बच्चों को पढ़ाने की जगह खोज रही हूँ, इसे बांध क्यों रखा है?
5: ए, चलाक!
0: आह, ईश्वर तुम्हें माफ करे बेटा, अपराध, हिंसा और अत्याचार करके धन्ना सेठ बनने की इच्छा अच्छी नहीं है बेटा।
4: ए बढ़िया, यह प्रवचन तुम अपने गिरजाघर में देना।
0: मैं प्रवचन नहीं दे रही हूँ बेटा, बस यही कह रही हूँ कि अपने पसीने की कमाई की रोटी खाने से तुम्हें सुकून मिलेगा।
8: हम लोग आ गए मदर।
9: पढ़ाई कहाँ होगी मदर?
0: अच्छा, तुम लोग आ गए, अंदर आ जाओ, इन चाचा लोगों को नमस्कार करो।
9: हमें डर लग रहा है मदर।
10: हाँ मदर, हमें डर लग रहा है।
0: डरो मत, ये लोग अच्छे हैं, ये लोग तुम्हारी पढ़ाई के लिए ये कमरा देंगे। आओ, हम सब मिलकर इसे साफ करते हैं।
11: बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है इस औरत ने। चलो चलो, बाहर जाकर खेलो, पढ़ो, कुछ भी करो, सफाई हम कर लेंगे। आज से चोरी, डकैती और फिरौती सब बंद।
5: सरदार, हमारे धंधे का क्या होगा? ऐसे में हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे?
11: इस मदर ने कहा ना, पसीने की कमाई में बड़ा सुकून है।
1: देखो, ए ओ
8: ओ
1: ओ दिए अजागोर
8: अजागोर,
1: ए जे आ
8: आ,
1: आ दिए आम
8: आम।
2: मोती झील की झोपड़पट्टी के बच्चे मदर टेरेसा के खुले आसमान के नीचे चलने वाले स्कूल में बड़ी संख्या में आने लगे। टेरेसा कोलकाता में ही लिटिल सिस्टर्स ऑफ द पुअर नामक धर्म संघ की बहनों के साथ रहकर मोती झील, तलतला, पान बगान और तिलजला की झोपड़पट्टियों में जाकर सबसे गरीब और निसहाय लोगों की सेवा करती रही। उस दौरान टेरेसा 14 क्रिक लेन पर स्थित मिस्टर माइकल गोम्स के घर रहने लगी।
12: मदर, मदर, मदर टेरेसा।
5: कौन है
12: जी? नमस्ते।
13: नमस्ते,
12: मैं सुभाषिनी हूँ, मदर टेरेसा की छात्रा हूँ, क्या उनसे मिल सकती हूँ?
13: क्यों नहीं।
5: मदर, मदर टेरेसा नीचे आइए, आपकी छात्रा सुभाषिनी आपसे मिलने आई है।
0: अंदर आ जाओ सुभाषिनी, कैसी हो बेटी?
12: मैं बिल्कुल ठीक हूँ मदर। मदर, मैं आपके साथ

0: क्या मैं इन बच्चियों के आग्रह को मेरी प्रार्थना सुनी जाने का संकेत समझ लूं?
1: मैं प्यासा हूँ, मेरे अनाथ लूले लंगड़े और बेसहारे छोटे से छोटे भाई बहनों के लिए इन नौजवान लड़कियों के साथ मिलकर तुम जो करोगी वह मेरे लिए करोगी।
0: प्रभु यीशु के पालक पिता संत जोसेफ के पर्व दिन पर हम सब मिलकर अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करेंगे।
2: 19 मार्च 1950 को सुभाषिनी मैग्डलिन पोल्टन, एनी और अन्य नव युवतियों ने मदर टेरेसा के साथ उनके दीनहीन लोगों की सेवा में समर्पित किया। मदर ने सुभाषिनी को आग्नेस और मैग्डलिन को जेत्रुद नाम दिया। 1950 में उनकी संख्या 12 हो गई। 1 अक्टूबर 1950 को आर्च बिशप पेरियर ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी को कोलकाता धर्म प्रांत के एक धर्म संघ के रूप में औपचारिक तौर पर स्थापित किया। 1951 में मदर टेरेसा ने भारतीय नागरिकता ग्रहण की। वह चाहती थी कि भारत देश, जिसे वह बेहद प्यार करती थी, उनका अपना देश हो। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की नई टोली कोलकाता शहर की सड़कों पर पड़े बीमार भिखारियों और बेसहारों की सेवा करने और आसपास की झुग्गी झोपड़ियों के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। इसके अलावा वे अलग अलग स्थानों पर दवा बांटने का काम करती रही।
3: मदर, आज कई सालों बाद ऐसा हुआ है, आपकी दवा खाकर मुझे दर्द नहीं हुआ। अल्लाह ने मुझे आपके पास भेज दिया।
4: आप मुझे यह वचन दे सकती हैं कि जब मैं मरने लगूं तो आप मेरे पास रहेंगी? मैं भगवान के पास बैठकर मरना चाहती हूँ।
0: हाँ, प्रभु ने चाहा तो मैं आऊंगी ताकि तुम चैन से उनके पास जा सको।
5: मदर, आपके हाथ से रोगियों को दवा मिलने से उन्हें कितनी राहत मिलती है।
0: विंसेंट, और तुम्हारे जैसे स्वयं सेवकों के होने से मुझे भी तो कितनी राहत मिलती है। गैस्पर भाई,
5: यहाँ आप कितने दिन रह सकती हैं? मदर, यह तो एक स्कूल का बरामदा है।
0: मुझे अपने लिए और भी कोई जगह ढूंढनी होगी। 14 क्रीक लेन में मिस्टर माइकल गोम्स के घर में हम 14 लोगों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है।
6: मदर, मदर वहाँ देखो, सड़क के किनारे
0: यह तो एक औरत है। ऐसा करो, इसे अस्पताल ले चलते हैं। पर हम इसे ले जाएंगे कैसे? ठहरो, मैं किसी से मदद मांग लेती हूँ। अरे भाई सुनो, सुनो इधर सुनो, हमारी मदद करो।
7: छी छी छी, इसे तो कीड़े पड़ गए।
4: मेरे बेटे ने, मेरे बेटे साहिद ने मेरे साथ ये किया, मुझे कूड़ेदान में फेंक दिया।
0: परमात्मा तुम्हें प्यार करता है, अपने बेटे की माँ बनो, उसे क्षमा कर दो।
4: नहीं, मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकती।
0: परमात्मा तुम्हें प्रेम करता है, तुम अपने बेटे को क्षमा कर दोगी तो उस प्रेम को महसूस करोगी, उसकी माँ बनो।
4: माफ करती हूँ, अल्लाह उसे माफ करे।
8: इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
0: ये तो चली गई एक सम्मानजनक मौत। ऐसे कितने लोग हैं जो शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और चैन की मौत मरने के लिए तरसते हैं। आप इसे ले जाइए, इसका अंतिम संस्कार आप अपने इस्लामी तरीके से कीजिएगा।

0: पैसे भी नहीं बचे हैं। जो केमिस्ट हमें मुफ्त में दवा दे रहे थे वे भी अब मना कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हमारे मरीजों को भर्ती करने से मना कर रहे हैं।
1: मदर, जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे।
2: कोई बात नहीं, आप लोग जाइए। ये मैं क्या कर रही हूँ? ना तो मैं दीन दुखियों की सेवा कर पा रही हूँ और ना उनका दुख दूर कर पा रही हूँ। मैंने सेंट मैरिज छोड़ा था ताकि मैं प्रभु के दिखाए रास्ते पे चल सकूं, पर मुझसे वो भी नहीं हो पा रहा है। ना मैं वहां की हूँ और ना यहाँ की रही। इससे तो अच्छा होता मैं लोरेटो कॉन्वेंट में ही रहती, कम से कम मुझे दो वक्त आराम की रोटी मिलती, किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं जाना पड़ता। मैंने ये कदम क्यों उठाया?
3: गरीबों की सेवा करने चली है। अरे तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है।
4: तू तो ऑर्थोडॉक्स है,
3: कहती है
5: एबॉर्शन मत करा, एबॉर्शन मत करा।
3: अरे तू तो खुद यहाँ एक अभिशाप है।
6: अरे तेरी सिस्टर्स जो है ना, अरे कौन सी बड़ी क्वालिफाइड है।
2: ये क्या हो रहा है मुझे? परमेश्वर, इतना अंधेरा क्यों?
7: घबराओ मत मेरी बच्ची, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैंने तुझे राह दिखाई है, तू हिम्मत मत हार, उसी राह पर चलती जा। मुश्किलें जरूर रहेंगी पर उनका हल भी निकलेगा। इंसानियत की सेवा का जो बेड़ा तूने उठाया है, उस जिम्मेदारी को निभा पाने में तू समर्थ है। हृदय में बसे मेरे प्रेम को पूरी दुनिया में बांट मेरी बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
1: मदर, मदर आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
2: हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। कहो, पीड़ित और अनाथ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसके लिए किसी दूसरे जगह की व्यवस्था करनी होगी। व्यवस्था करने वाले तो परमेश्वर हैं, उन्हीं पर भरोसा रखो, सारी परेशानियों को वह दूर कर देंगे। आओ चलें, हम प्रार्थना करें।
8: 1953 तक बहनों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्हें माइकल गोम्स के घर में रहने के लिए जगह कम पड़ने लगी। कुछ महीनों की तलाश और प्रार्थना के बाद मदर और बहनें 54 लोअर सर्कुलर रोड में स्थित एक बड़े मकान में चली गई, जो आज मदर हाउस के नाम से विख्यात है। सेवा का कार्य बढ़ता गया। सड़कों के किनारे से उठाकर लाए गए दीनहीनों की संख्या बढ़ती गई। उन्हें ठहराने के लिए मदर तेरेसा शहर के कोने कोने में जगह खोजती रही, कोलकाता महापालिका के अधिकारियों से भी संपर्क करती रही। महापालिका के अधिकारियों ने सुझाव दिया कि कालीघाट मंदिर के धर्मशाला को वह मरीजों की सेवा के लिए उपयोग करें, और वही धर्मशाला बन गया निर्मल हृदय, दीनहीनों का शरण स्थल, प्रेम और संवेदना का तीर्थ।
2: सिस्टर जयत्रूथ, गंगा जल लाइए। लो, ये गंगा जल है।

0: कितनी शांति से इसके प्राण निकल गए। इसे ले जाओ और अपनी हिंदू धार्मिक विधि के अनुसार इसका अंतिम संस्कार करो।
1: तरह नारा लगाने से काम नहीं चलने वाला। देखिए, मंदिर के सामने माँ काली जी के बगल में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का काम धड़ल्ले से चल रहा है। जय माता रा, चटर्जी बाबू, अब क्या किया जाए?
2: ओम होम क्या बोलेगा? नेताजी से पूछिए, समाज का ठेका तो इन लोगों ने ले रखा है, है? यही लोग है जिन्होंने धोरमशाला इन फिरंगी को दे दिया है और लफड़ा बढ़ाया है।
3: अरे भाई, हमने थोड़ी दिया है, अरे कोलकाता म्यूनिसिपालिटी ने दिया है ना। लेकिन समस्या ये थोड़ी है, देखिए, हम लोग ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे तो हिंदू धर्म का नष्ट होना सुनिश्चित है, समझे कि नहीं? अरे हम लोग उस फिरंगिन के बारे में बात करने आए हैं ना, बोलिए आए हैं कि नहीं? तो फिर वही कीजिए ना।
1: जय माता रा। अरे ये लोग बहुत ही गंदे लोग हैं, ये हमारा धर्म भ्रष्ट करने आई हैं, कुछ तो करो।
4: साथियों, वे लोग भोले भाले बीमारों को इलाज का लोभ और सड़क के किनारे पड़े भिखमंगों को खाने पीने का लालच देकर ये अपने चर्च में मिला लेंगे, ऐसे तो हमारी हिंदू कौम ही खत्म हो जाएगी।
1: सही बात है। ऐसा चलता रहेगा तो कौन काली मंदिर में पूजा के लिए आएगा?
2: ओ, सोच बात है भाई, और पंडित जी के पापी पेट का सवाल है।
1: चौटर जी बाबू, मजाक मत करिए। जय माता रा, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। काम की बात करो चटर्जी बाबू।
3: काम की बात ये है कि हमें इस फिरंगीन के साथ साथ सभी लूले लंगड़ों और भिखमंगों को यहाँ से बाहर निकालना होगा, है कि नहीं?
2: बिल्कुल सोच कहा आपने।
3: सुनिए, देखिए, हमने पुलिस कमिश्नर को खबर दे दिया है, वे आते ही होंगे।
1: बंद करो। अरे कहाँ छिप कर बैठी है, बाहर निकल। बोटी बोटी काट कर हुगली में फेंक दूंगा, निकल बाहर।
5: मदर प्लीज, बाहर मत जाइए, वे लोग पागल हो गए हैं, आपको मार कर खत्म कर देंगे।
6: ए मेछिले, अगर हिम्मत है तो बाहर निकल।
7: निकल बाहर।
6: दरिद्रों की सेवा तो तुम्हारा ढोकोसला है।
5: मदर मत चाहिए, हमें आपकी जरूरत है।
0: ठीक है, मैं धर्म परिवर्तन करती हूँ, मैं एक कमजोर हिंदू को अच्छा हिंदू बनाती हूँ, लेकिन जैसे आप लोग कह रहे हैं, मैं कभी भी हिंदुओं से या मुस्लिमों से किसी को ईसाई नहीं बनाती। यदि किसी को अच्छा हिंदू या अच्छा मुसलमान बनाना अपराध है तो मुझे मार डालिए, लेकिन इस तरह चिल्ला चिल्ला कर नहीं, शांति से मुझे मार डालिए, नहीं तो मेरे इन दीनहीन लाचार मरीजों की शांति भंग हो जाएगी। कृपया करके आप लोग शांत रहें।
1: कैसी शांति? विदेशी होकर हमारी काली मंदिर की धर्मशाला पर कब्जा करती हो और हमसे शांति की बात करती है। जय माता रानी।
3: विदेशियों तुम वापस जाओ,
7: वापस जाओ, वापस जाओ।
3: विदेशियों तुम वापस जाओ,
7: वापस जाओ, वापस जाओ।
3: काली घाट खाली करो,
7: खाली करो, खाली करो,
3: खाली करो। आप लोग
8: ये शोर शराबा बंद कीजिए, क्या चाहते हैं आप लोग?
3: हम चाहते हैं कि ये विदेशी महिला काली घाट से चली जाए।
8: क्यों?
1: ये हमारे पवित्र मंदिर को अपवित्र कर रही है।
4: वह मंदिर की धर्मशाला में बीमारों और मरने वाले भिखमंगों को जमा कर रही है।
3: ये हिंदुओं को जबरन क्रिश्चियन बनाने का षड्यंत्र कर रही है।
2: और होम चाहते हैं कि वह इस देश से चली जाए, हमारे धर्म को इससे खतरा है।
4: विदेशी मिशनरी वापस जाओ,
7: वापस जाओ, वापस जाओ।
8: चुप रहिए, चुप रहिए। पहले मैं खुद अंदर जाकर देखता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। आप मुझे दिखाइए।
3: विदेशी मिशनरी भारत छोड़ो,
7: भारत छोड़ो, भारत छोड़ो,
3: विदेशी मिशनरी भारत छोड़ो।
9: चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। अरे मेरी बात जरा सुनिए। आपने मुझे पहचाना, मैं कालू हूँ। वही कालू जो इस काली घाट के मंदिर के बाहर भीख मांगा करता था। मेरा पूरा बदन फोड़े और फुंसियों से भरा था। आप लोग मेरे करीब से गुजरते तो नाक पर रुमाल रखते थे। किसी ने मेरी तरफ दया की दृष्टि नहीं डाली, पर मदर तेरेसा और इनके सिस्टर्स ने मुझे उठाकर इसी निर्मल हृदय में पहुंचाया, मेरा इलाज किया। मैं तो ईसाई नहीं हूँ ना।
2: कीरे कालू, इसका मतलब हम लोग अपने मंदिर के धर्मशाला को तीर्थयात्रियों के बदले इन कोड़ियों को इलाज के लिए दे दे इस फिरंगी को।
9: अरे चटर्जी बाबू, आप लोग जिस पवित्र स्थान धर्मशाला की बात कर रहे हैं, क्या इस जगह पर पहले तीर्थयात्री ठहरते थे? क्यों पंडित जी, बताइए, जवाब दीजिए। चटर्जी बाबू बोलिए, शायद आपको नहीं पता, ये जगह जहाँ गरीबों का इलाज हो रहा है, यहाँ पहले जुए और शराब का अड्डा था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको राह चलते मुझ जैसा कोई लूला लंगड़ा भिखारी या कोढ़ी दिख जाए तो आप क्या करेंगे? मुंह फेरकर आगे बढ़ जाएंगे या अपनी पर्स में से चवन्नी अठन्नी का सिक्का उसकी तरह उछाल देंगे और सोचेंगे सोचेंगे कि बड़ा पुण्य काम किया, जिम्मेदारी खत्म हो गई। पर क्या किसी में हिम्मत है उस कोड़ी भिखारी को अपने साथ लाकर उसका इलाज करे? किसी भी आदमी में इतनी हिम्मत है कि किसी भिखारी बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाए, उसे पढ़ाए लिखाए, जीवन का मकसद दे? बस यही सब हो रहा है इस निर्मल हृदय में। चटर्जी बाबू, आप ही बताइए, कुछ गलत हो रहा है? आप लोग चिल्ला चिल्ला कर विरोध कर रहे हैं, क्या यही सही है? बताइए बताइए।
10: लगता है सबके मुंह में ताला लग गया है। यदि आप लोगों को लगता है कि मदर तेरेसा और इन सिस्टर को यहाँ नहीं होना चाहिए तो ठीक है, मैं उन्हें यहाँ से हटवाने के लिए म्युनिसिपालिटी वालों को कह दूंगा, लेकिन एक शर्त है, सेवा का कार्य यहाँ यूं ही चलता रहे। इसके लिए आप लोगों को अपनी माताओं और बहनों को यहाँ भेजना होगा ताकि वे इन कोढ़ियों और भिखमंगों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। तो हम मदर तेरेसा और उनके सहयोगियों को यहाँ से हटा दें। बोलिए, जवाब दीजिए।
3: देखिए भाइयों, यह तो बड़ी हिम्मत और सेवा भाव का कार्य है, यह हर किसी के बस की बात नहीं है।
11: अरे
12: बिल्कुल नहीं,
13: बिल्कुल नहीं है
14: भाई।
4: साथियों, समझदारी इसमें है कि मदर तेरेसा और उनकी बहनों को ही यह काम करने दिया जाए।
11: यही सही है,
14: सही
11: होना चाहिए।
14: अरे
11: बिल्कुल सही।
10: लेकिन आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
15: हम अपना विरोध वापस लेते हैं। जय माता दी। वापस लेते हैं।
3: हाँ बोलो भाइयों, निर्मल हृदय यही रहेगा,
7: यही रहेगा, यही रहेगा।
4: निर्मल हृदय जिंदाबाद,
7: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
0: बस बस शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए। मैं आप सभी की आभारी हूँ कि आप लोगों ने निर्मल हृदय को हृदय से स्वीकारा। भाइयों, हम यह कार्य मानवता के लिए करते हैं, वाहवाही के लिए नहीं। हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते। हमारी दृष्टि में हर व्यक्ति का धर्म है मानवता। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मानवता के मार्ग पर चलें, लोगों की मदद करें और किसी भी दरिद्र को नजरअंदाज न करें। फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही वक्त पे आकर हमारी मदद की।
10: यह मेरा कर्तव्य था मदर।
16: माँ,
17: हाँ देखो भैया, ध्यान से, ध्यान से।
16: माँ को
17: अल्लाह अल्लाह, थोड़ा सा आगे लाओ।
18: आराम चाहिए, आराम चाहिए, आराम चाहिए।
17: देखिए, हम मदर से मिलना चाहते हैं।
19: मदर दवा लेने के लिए बाजार गई हैं।
5: अभी आती ही होंगी।
17: अच्छा ठीक है, अरे ये लो आ गई।
11: माँ मैं वही आदमी हूँ जिसने आपकी बोटी बोटी काट कर हुगली में फेंकने की धमकी दी थी। उस दिन आपका धैर्य देखकर और आपकी बातें सुनकर शर्म से मेरा सर झुक गया था। आज मैं आपके पास एक प्रार्थना लेकर आया हूँ माँ। मुझे हैजा हो गया है, बहुत खराब स्थिति है, मुझे आप अपने निर्मल हृदय में शरण दीजिए माँ।
0: हाँ हाँ मैं आपको पहचान रही हूँ, आपको आराम की जरूरत है। इन दिनों पूरे शहर में हैजा का प्रकोप है। सिस्टर सिस्टर आग्नेस इन्हें अंदर ले जाइए।
12: मधुर हमें क्षमा कीजिए, उस दिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हम पापी हैं मधुर, हमें क्षमा कीजिए मधुर।
0: नहीं भाई, मेरे लिए कोई व्यक्ति पापी नहीं है, सब कोई ईश्वर की संतान है, इसलिए क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। निर्मल हृदय के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। आइए पंडित जी, आप अंदर आइए।
11: पिछले 26 वर्षों से मैं माँ काली की पूजा करते आ रहा हूँ। आज मैं माँ काली का साक्षात दर्शन अपनी आंखों के सामने कर रहा हूँ।
13: मदर ने अनाथ बच्चों के लिए शिशु भवन की स्थापना की। उन बच्चों का और अनगिनत मरीजों का पेट भरना टेढ़े खीर था। वो लोगों से भीख मांगकर उनका पेट भरा करती थी। और एक दिन
19: देखो आ गई वह विदेशी मिशनरी भीख मांगने के लिए। पता नहीं बेवकूफ लोग इस महिला को रोज दान देते हैं, हमने तो कभी नहीं दिया और आगे भी नहीं देंगे। दान देंगे तो धंधा बैठ जाएगा, और बड़े मुश्किल से हमने यह बेकरी खड़ी की है। दान पुण्य में इसे चौपट करने के लिए थोड़े ही।
20: अरे बिल्कुल सही, अरे देना भी तो किसी हिंदुस्तानी को दे, इस विदेशी महिला को क्यों दे? क्यों?
0: हमारे शिशु भवन के बच्चों के लिए और निर्मल भवन के मरीजों के लिए मेहरबानी करके कुछ पाव रोटी दान में दे दीजिएगा।
19: शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? हट जा मेरे सामने से।
0: भाई ये तो मेरे लिए था, पर मेरे अनाथ बच्चों और बेसहारे मरीजों के लिए भी तो कुछ दे दीजिए।
11: मदर
21: मदर कल से आप यहाँ आने का कष्ट मत करिए, मैं स्वयं रोज आपके निर्मल भवन और शिशु भवन में यह पावरोटी पहुँचा दूंगा मदर।
13: बेकरी वाला प्रतिदिन निर्मल हृदय में और शिशु भवन में सामग्री पहुंचाने लगा। यह थी मदर की अंतर शक्ति का एक नमूना। 1956 में मदर ने कोढ़ियों के लिए कोलकाता के एक उपनगर गोबरा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की। 1963 में अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए रांची में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शाखा खोली गई। झांसी दिल्ली और मुंबई में भी बेसहारे लावारिस और मानसिक रूप से पीड़ित लोगों के लिए नई शाखाएं खुलने लगी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की बहनें इन झुग्गी झोपड़ियों में मुफ्त शिक्षा व सेवाएं देती रही। 1965 में पहली बार मदर ने भारत के बाहर वेनेजुएला में संस्था की स्थापना की, और इस तरह मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया। 1967 में पोप पॉल छठवें के निमंत्रण पर मदर ने एक केंद्र रोम में खोला। अनाथ बच्चों की सेवा के लिए शिशु भवन और अन्य बेसहारे लोगों की सेवा के लिए उत्तरी यमन, एथियोपिया, सूडान और यूरोप तथा अमेरिका के विभिन्न प्रांत में भी नई नई शाखाएं खुल गई। मदर तेरेसा ने एड्स रोगियों की देखभाल के लिए न्यूयॉर्क, मैक्सिको, ग्लासगो, सैन फ्रांसिस्को, मॉस्को, एथेंस और मैड्रिड में और मुंबई में भी एड्स सेवा केंद्र खोले। भूकंप से प्रभावित गौतेमला, अर्मेनिया तथा अकाल से प्रभावित एथियोपिया में भी मिशनरीज ऑफ चैरिटी की बहनें पहुंच गई। बमबारी से तबाह हुए बेरूत शहर में भी मिशनरीज ऑफ चैरिटी की बहनों ने मदर की अगुवाई में राहत पहुंचाई। मदर के कार्य से प्रभावित होकर 1962 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 1971 में एशिया का नोबेल पुरस्कार रमोन मैग्सेसे अवार्ड से मदर नवाजी गई। उसी वर्ष पोप पॉल छठवें ने मदर को पोप जॉन 23वें शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। उसी वर्ष मदर को जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिला। 1972 में भारत सरकार ने नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग पुरस्कार दिया। 1973 में टेम्पल्टन सम्मान तथा 1978 में ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल शांति पुरस्कार मदर तेरेसा को 10 दिसंबर 1979 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो शहर में दिया गया। पुरस्कारों की कड़ी में 1980 में भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से मदर तेरेसा को अलंकृत किया। 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने मदर तेरेसा को भारत की महान सुपुत्री पद देकर विभूषित किया। उसी वर्ष सद्भावना सम्मान से भी मदर सुशोभित की गई। 1990 से लेकर 1997 तक मदर तेरेसा के लिए अत्यंत सक्रियता की अवधि थी। स्वास्थ्य उनका सही नहीं था, तब भी उन्होंने विश्व भर में 170 नए समुदायों की स्थापना की। युगांडा, पाकिस्तान, स्लोवेकिया, पपुआ, न्यू गिनिया, कंबोडिया, अल्बानिया, इराक, जर्मनी, हंगरी, होंडुरास, येमन, यूएसए, फिलीपींस, हैती, उज्बेकिस्तान आदि देशों में मिशनरी साहब चैरिटी के केंद्र खुल गए। माँ तेरेसा का जर्जर शरीर शनै शनै और छेड़ होने लगा। दो बार उन्हें हृदयघात हो चुका था। उनके शरीर में पेसमेकर लगा हुआ था। 1993 में और 1996 में दो बार हार्ट सर्जरी हुई, जिसके बाद मदर बिल्कुल कमजोर हो गई थी। मदर चाहती थी कि उनकी मृत्यु साधारण लोगों की तरह हो, इसलिए उनकी बहनें उन्हें अस्पताल से मदर हाउस लाई और 5 सितंबर 1997 की रात
0: जीसस आई लव यू।
1: डॉक्टर वुडवर्ड जल्दी आइए।
6: बिजली भी गुल हो गई, अब क्या होगा?
0: जीसस हाय

0: मदर के महाप्रयाण के बाद 8 दिन तक अर्थात 13 सितंबर को उनकी अंत्येष्टि तक संपूर्ण विश्व ने शोक मनाया। मदर की शव यात्रा अद्वितीय थी। सेंट थॉमस चर्च के 155 वर्ष पुराने घंटे की ध्वनि के साथ सेना के राजपूत रेजिमेंट के 8 जवानों ने उनकी अर्थी को तोप गाड़ी पर रखा। वही तोप गाड़ी जिसने 50 वर्ष पूर्व नई दिल्ली में शांति के मसीहा महात्मा गांधी के पार्थिव शरीर को वहन किया था। रोते बिलखते कोलकाता की जनता के साथ विश्व के 40 से अधिक देशों के प्रमुखों ने भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ मिलकर मदर की अंत्येष्टि में भाग लिया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस तथ्य को पुष्ट किया कि मदर तेरेसा विश्व की सर्वोत्कृष्ट नागरिक थी। कोलकाता के मदर हाउस में उनके पार्थिव शरीर को दफनाया गया, जो आज बहुतों के लिए प्रेरणा एवं स्वर्गीय कृपाओं का स्रोत है। अक्टूबर 2003 को रोम ने मदर तेरेसा को धन्य घोषित किया। सेवा की मूर्ति, ममता की मां, जिन्हें आज संपूर्ण विश्व प्रणाम करता है।
1: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
2: इन अ वॉइस निस्कॉट एग्नेल रेडियो।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो।
4: मैं हूं एनोश।
3: और मैं हूं जेफरी।
4: तो जेफरी, आज मौसम कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, क्या कहते हो?
3: हाँ यार, आज कुछ बढ़िया सा सुनने का मन कर रहा है। पुराने एवरग्रीन सॉन्ग सुने क्या?
4: एवरग्रीन सॉन्ग्स? यार तूने मेरे मन की बात कह दी। आज सुबह से ही मेरा भी मन कर रहा था कि कुछ नॉस्टैल्जिक सुना जाए। तो क्या सुना जाए?
3: तू बता, तेरा फेवरेट कौन सा है?
4: मेरा तो यार एक ही सबसे फेवरेट सॉन्ग है एवरग्रीन्स में, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर।

0: ओ जेफ्री, आज रेड शर्ट कैसे पहन के आया? तेरे पीछे कोई सांड नहीं पड़ा क्या?
1: अच्छा, तू खुद पीली पैंट पहन के आ सकता है और मैं रेड शर्ट पहनूं तो तुझे दिक्कत है?
0: यार पीले कलर में क्या दिक्कत है भाई?
1: दिक्कत? पीली पैंट पहन के पीला कद्दू लग रहा है।
0: अबे यार तू उससे लड़ता क्यों रहता है भाई? चल गाने सुनते हैं ना।

0: जुल्फे तेरी।
1: अरे यार पता, जब भी मैं यार चार पांच लोगों के बीच में खड़ा होता हूँ ना, मेरे से बोला नहीं जाता भाई, घबराहट सी होती है।
0: असलियत तो ये है, घबराता मैं भी हूँ
1: यार। हद है भाई, मैं किससे पूछ रहा हूँ यार।

0: अरे राजा सुन।
1: अरे यार भाई गाना तो मस्त था, लेकिन एक बात बता जेफ्री, तू आज काला काला क्यों नजर आ रहा है?
2: अरे काले तो क्या हुआ, दिल वाले है बेटे, इस पे गाने बने हुए, गाने समझा गया?
1: अरे भाई गुस्सा मत कर यार, स्टूडियो का लाइट चला गया था, तू मेरे को दिखा नहीं। चल कोई नहीं, गाने सुनते हैं, यही वाला गाना बजा दे।
3: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं, या अल्लाह काले से डर गए क्या?
0: हमें काले हैं तो...

ताले तक धमी तक ताले तक जमी तक दला अंग तक जगे तक ताले के नक तक नक तक जमी तक नक नक जमी तक नक नक जमी तक नक नक जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के डे ताले जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के डे जम तारी जग तारी ता के नक ता जन्ने ता जन्ने ता जम तारी जग तारी जाने

0: अच्छा अनुज, पता चला दिल वाले हम दिल वाले। अच्छा ये बता, तेरे लास्ट ईयर एग्जाम में कितने नंबर आए थे?
1: जितने भी आए हो, पास तो हो गया था ना। लेकिन आज क्यों पूछ रहा है? एग्जाम तो एक साल पहले था।
0: अरे तेरी शक्ल देख के लग रहा है तू कोरा कागज देख के आया होगा।
1: एटलीस्ट कोरा कागज दिया था, तेरी तरह फादर पे ऐसे लिखने बोला था और काऊ पे लिख करके तो नहीं आया ना।

0: और अनुष, मैंने गार्गी से सुना है कि तेरे को भूतों से डर लगता है।
1: नहीं नहीं भाई, मुझे भूतों से, अंधेरे से, सुनसान इलाकों से किसी से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है वो बस तेरी शक्ल से।

0: क्या देखता रहता है भाई जेफरी, जाके बात कर रहे हैं ना उससे।
1: नहीं यार, मुझे शर्म आती है।
0: तो दोस्त, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, बस देखते रहो, देखते ही रहो, हजार चाहे लाख बार देख लो, कुछ नहीं होगा जब तक बात नहीं करोगे।

0: अरे अनुष, तूने वादा किया था।
1: क्या वादा किया था?
0: जिम ज्वाइन करेंगे भाई, जिम।
1: यार अगले महीने से करेंगे ना, प्लीज।
0: तू जिस दिन अपना वादा पूरा करेगा ना, उस दिन हम पहाड़ी रखेंगे।
1: पहाड़ी? अरे नहीं भाई नहीं, अगले महीने से पक्का चलेंगे।

0: वाह, क्या गाना था। अच्छा अनुष, ये बता, ये निब्बा निब्बी क्या होता है?
1: अरे ये सातवीं आठवीं कक्षा के लड़का लड़की होते हैं ना, एक दूसरे को ऐसे कॉल पे बोलते रहते हैं, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने क्या किया, या सोना मोना, ये सब। तो इन लोग को निब्बा निब्बी बोलते हैं।
0: अरे इन पर्सन, तू जानते है क्या किसी निब्बा निब्बी को?
1: हाँ हाँ, अपनी क्लास में तो है यार, एक दो है, मैं जानता हूँ। लेकिन तू ये सब पूछ क्यों रहा है?
0: अरे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं, 1970 से शुरू हो गया था। इसका एग्जाम्पल तेरे को ये गाना सुन के पता चल जाएगा।

0: बस यार भाई बहुत हो गया ये शोना मोना।
1: यार ये शोना मोना तो ठीक है, पर इन सब के बीच में जब दूरियां बढ़ जाए तब क्या करना चाहिए?
0: तब तो भाई मैं एक ही चीज कर सकता हूँ, ये गाना सजेस्ट कर सकता हूँ, बहुत ही प्यारा गाना है।

0: हाय तेरी जुल्फें भाई साहब, क्या लग रहा है?
1: अबे तुझे क्या हो गया?
0: तेरी जुल्फें देख भाई, क्या मस्त लग रही हैं।
1: दूर हट मुझसे।
0: अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो यार गाने की बात कर रहा हूँ। गाना सुन, बहुत प्यारा है भाई, जुल्फों वाली जाने जहाँ।
2: ओ हसी।

0: क्या मेलेडी थी गाने की, मजा आ गया।
1: अच्छा अब ये बता नोश, तू मोहम्मद रफी साहब को जानता है?
0: हाँ भाई, कौन नहीं जानता, मेरे तो वन ऑफ दी फेवरेट्स में से एक है।
1: अरे उनका एक सॉन्ग है जिसने तहलका मचा दिया था।
0: कौन सा?
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए।
0: बजा दे फिर।
2: बदन पे सितारे लपेटे हुए,

0: अरे यार जेफरी, आज पता बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ।
1: क्या हुआ?
0: मैं रास्ते में आ रहा था कॉलेज के लिए और मेरा बैग फट गया।
1: अरे आज मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ।
0: क्या हुआ तेरे साथ?
1: मैं आ रहा था और मेरी जीन्स फट गई।
0: अरे बाकी सारी चीज़ें तो टूटती फूटती रहती हैं यार, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा अमर रहती है, वो है प्यार।

0: आज जेफरी का मूड बहुत ही अच्छा।
1: अच्छा तो फिर इसी बात पे गिफ्ट दे।
0: ओह क्या छोटी बात कर दी तूने आज। ये ले भाई तू चॉकलेट ले।
1: भाई मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जब कोई हद से ज्यादा प्यार दिखाता है ना, समझ लो पक्का कुछ ना

0: मंजिले अनलिमिटेड।
1: नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे शो
0: मंजिले अनलिमिटेड।
1: जितना अटपटा ये शो है उससे कहीं ज्यादा अटपटा और चटाकेदार स्ट्रीट फूड है भारत की गली।

0: पड़ जाए। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी डिश जिसके इंग्रेडिएंट्स सुन के आपके पेट और दिमाग दोनों में टर्बुलेंस आ सकता है। सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो रही ये डिश का नाम है मैगी मिल्कशेक। नाशिक महाराष्ट्र में मशहूर देसी स्वाद कैफे की स्टार डिश है मैगी मिल्कशेक। मजेदार क्रीमी मिल्कशेक के ऊपर टॉपिंग है मसालेदार वेजिटेबल मैगी की, जिसमें आपको ढूंढने पर मिलेंगे कटी हुई सब्जियां भी। भाई हम में तो दम नहीं है ऐसे डेडली कॉम्बिनेशन कभी ट्राई करने का, और अगर आप में है तो हमें जरूर जानकारी दें ताकि हम भी जान सकें आखिर भारत की जनता में कितना दम है। आज के कॉलर से जानते हैं उनकी अटपटी डिश के अनुभव के बारे में।
1: हेलो,
0: हाय, स्वागत है आपका फूड डिजास्टर्स पे। मैं किससे बात कर रहा हूँ?
1: हाय मैडम, मेरा नाम गार्गी है और मैं आपको ना अपने एक फूड डिजास्टर एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मैं क्या बताऊँ?

0: ये आपकी है, आप जो भी बताएं।
1: नादिर, मैं ना दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पे ना पास ही में एक वैरायटी समोसे वाले की दुकान है, और वो वैरायटी समोसे इतनी वैरायटी पे जा चुके हैं कि वो चॉकलेट समोसा बना रहे हैं। अब उस चॉकलेट समोसे को खाने पे इतना गंदा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सोच रहे हो, समोसा जो एक चटपटा है जिसके साथ चटनी मिलती है, हरी चटनी, लाल चटनी, चलो मीठी है वहां तक तो चलता है, लेकिन

0: ही समोसा खा लिया, पनीर समोसा खा लिया, लेकिन चॉकलेट समोसा आपको नहीं लगता ये डिजास्टर है?
1: अरे बाप रे, सुन के तो लगता है कि हॉस्पिटल में लोग पड़े होंगे बस ये समोसा खा के। आपने कब ट्राई किया था और आपको किसने सजेस्ट किया इसके बारे में?
0: मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग ऐसे घूमने निकले थे एक दिन, वहाँ पे वैरायटी समोसे पे हमने मेन्यू चेक करा तो उसमें एक नई चीज ऐड हुई थी और ऊपर से इसको हाईलाइट करके इसके ऊपर एस्ट्रिक बनाया हुआ था चॉकलेट समोसे के नाम का। तो हमने सोचा कि भाई ये क्या नई चीज आई है, चलो ट्राई करते हैं। हमने ट्राई करा, खा लिया, लेकिन

0: मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट स्नाडन पिंटो साइनिंग ऑफ।
1: मंजिले अनलिमिटेड।

तू इतना घबराती क्यों है? अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध चल। अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। बस एक कदम आगे बढ़ाकर उस लक्ष्मण रेखा को लांघ जा। भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? अब बस भी कर अपनी बुजदिली, कब तक ऐसा करती रहेगी? सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। मैं तो एक कमजोर लड़की हूं, हटा अपने इस बहाने को। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। अच्छी तकदीर की दुआ मांगना बंद कर पीर फकीरों से।

0: इंडिया दिल से।
1: गुड मॉर्निंग इंडिया, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूँ रॉबिन्सन। यहाँ पर हम बातें करते हैं सीधे दिल से और ये जुड़ जाती हैं दूसरों के दिल से। यहाँ पे मिलते हैं दिल और दिलों में बस जाता है प्यार, और इसी प्यार के खातिर हम इस सेगमेंट को आपके सामने लेकर आए हैं।
0: दिल से।
1: दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा टाइम इज मनी, लेकिन क्या टाइम सच में मनी है? टाइम केवल पैसे से ही नापा जा सकता है? क्या समय की हमारे लिए कोई और अहमियत नहीं है? एक कहानी मुझे आज यहां पर याद आ रही है, बल्कि एक सचमुच में घटा वाकिया है, और इस वाकिये के जरिए हम देखेंगे कि किस प्रकार समय की जो परिभाषा है टाइम इज मनी, वो हमारे जीवन में बदल सकती है। एक बार एक नौजवान किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया। उस जगह पर तो अपने सभी सर्टिफिकेट साथ में लेकर तैयारी करके उस जगह पे पहुंच गया। अब वहां पहुंचने के बाद कुछ देर इंतजार करने के बाद जो इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर लोग थे, उन्होंने उसे कैबिन में बुला लिया। अंदर जाकर वहां पर सभी लोग जो इंटरव्यू लेने वाले थे बैठे हुए थे। उनके सामने इसने अपनी फाइल बढ़ाई और बैठ गया। इंटरव्यू लेने वाले लोगों ने जब फाइल खोलकर देखी तो वे काफी खुश हो गए और मन ही मन इसे नौकरी देने का उन्होंने निर्णय कर लिया। फिर उनमें से जो उनका बॉस था, उन्होंने उससे पूछा, आपके इस पढ़ाई के पीछे किसका योगदान है? आपने कैसे इतनी सारी पढ़ाई की? क्या आपके पिता आपको मदद करते थे? तो उस व्यक्ति ने थोड़ी देर मौन रहकर उन्हें कहा, नहीं, मेरे पापा जो है वो तो पहले ही गुजर गए हैं, ये मेरे माँ का योगदान है। मेरी माँ कई जगहों पर जाकर बर्तन माँजा करती थी और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे पढ़ाई करने के लिए मदद की। बॉस ने इसकी बातें सुनने के बाद उससे कहा कि देखो, नौकरी देनी है या ना देनी है ये बात हम कल डिसाइड करेंगे। तुम कल इसी समय आना और हम आपको बताएंगे कि नौकरी आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती। लेकिन उससे पहले आज जब तुम घर जाओगे तब जाकर अपने माँ के हाथों को साफ करना, धोकर साफ करना। इस लड़के को सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगी। क्या बात है, मुझे माँ के हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है? क्या नौकरी पाने का ये कोई नया तरीका है? क्या है ये सब? और इस बातों को सोचते हुए वो घर चला गया। दूसरे दिन उसी समय वो लड़का उस कंपनी में वापस आकर बॉस से मिला और नौकरी के लिए दरखास्त करने लग गया।
2: In a voice, radio.
1: तब उस बॉस ने उससे कहा कि मैं नौकरी तो तुम्हें दूंगा, लेकिन क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुम्हें कल कहा था? तो लड़के ने कहा, हाँ मैंने किया, अपनी माँ के हाथों को मैंने कल धोया। और उस बॉस ने उससे पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दिया, क्या मालूम पड़ा? उस लड़के ने कहा, मेरे माँ के हाथों में कई सारी जख्में हो गई थी, काम करते करते मुझे पालते पालते उसने कभी अपने हाथों की परवाह नहीं की। मैं आज इस मुकाम पर जो पहुंचा हूं वो केवल और केवल मेरी माँ के त्याग के कारण है। मैं आज जो बनने वाला हूं या फिर बनना चाहता हूं उसके पीछे मेरे माँ का ही योगदान है। उस बॉस ने उस लड़के को देखकर उससे कहा, अगर मैं चाहता तो तुम्हें नौकरी कल ही दे सकता था, लेकिन मैं तुम्हें इस बात से वाकिफ कराना चाहता था कि तुम जो इस मुकाम पे पहुंचे हो वो तुम्हारे इन नंबरों के कारण, इन सर्टिफिकेट्स के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ के कारण है। और मुझे खुशी है कि मेरे कंपनी में एक ऐसा लड़का काम करने वाला है जिसे अपने माँ की
3: कदर है।
1: प्यारे दोस्तों, ये जो कहानी है ये हमें कई बातें बताती है। उस औरत को यदि हम ध्यान से उसके बारे में सोचे तो हम पाएंगे कि उसने अपने पूरे समय को अपने बेटे के प्यार के लिए कुर्बान किया। उसने अपना पूरा समय अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए लगाया और उस प्रकार उसने अपने प्यार को अपने बेटे से जताया। यह बेटा जब अपनी माँ के साथ, भले ही बॉस के कहने पे क्यों ना हो, माँ के साथ थोड़ा समय जब इसने बिताया, उसके हाथों को देखा, तो माँ के प्रति, अपने माँ के लिए उसका जो प्यार है वो उमड़ पड़ा। उसे ये मालूम हुआ कि उसकी माँ ने किस हद तक उससे प्यार किया है। प्यारे दोस्तों, कई बार जब हम अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने तो अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में ही लगा दी है। इसका असर हमारे बच्चों पे होता है। हम उनके साथ दो पल प्यार से बिताते नहीं हैं। जीवन भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और आखिर में हमें पता चलता है कि जो बच्चे जिनके लिए हमने ये सब किया है वे भी अभी उस पैसे कमाने की साइकिल में चल पड़े हैं। और ऐसे में आखिरी समय में हम जब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ हो, वे हमारे साथ नहीं होते हैं, क्योंकि वे भी समय के उसी चक्र में फंस गए होते हैं जहां पर समय को केवल पैसों में तोला जाता है। समय पैसों में तोलने की चीज नहीं है, समय रिश्तों और प्रेम के तराजू में तोलने की चीज है। इसीलिए दोस्तों, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज रिलेशनशिप, टाइम इज लव।
0: इंडिया दिल से।
2: Inner Voice, Miskot, Agnel Radio.

तू इतना घबराती क्यों है? अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। बस एक कदम आगे बढ़ाकर उस लक्ष्मण रेखा को लांग जा। भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? अब बस भी कर अपनी बुजदिली, कब तक ऐसा करती रहेगी? सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। मैं तो एक कमजोर लड़की हूं, हटा अपने इस बहाने को। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। अच्छी तकदीर की दुआ मांगना बंद कर पीर फकीरों से।

0: इंडिया दिल से।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रॉबिन्सन। आपका स्वागत है इंडिया दिल से में। यहां पर हम बातें करते हैं सीधे दिल से और ये जुड़ जाती हैं दूसरों के दिल से। यहां पे मिलते हैं दिल और दिलों में बस जाता है प्यार, और इसी प्यार के खातिर हम इस सेगमेंट को आपके सामने लेकर आए हैं।
0: दिल से।
1: दोस्तों, कई बार ऐसी बातें होती हैं कि हम दूसरों की कमियां ढूंढने लग जाते हैं, हम दूसरों को नीचे खींचने लग जाते हैं और ढूंढ ढूंढ कर उनकी कमियों को उनके सामने लाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ यह कि हम अपने आप को उनसे बड़ा दिखा दें और उन्हें नीचे दिखा दें। दोस्तों, मुझे एक वाकया यहाँ पे याद आ रहा है जो कुछ दिनों पहले मैंने बाइबल में पढ़ा था। प्रभु ईसा मसीह अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे और चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में पहुंचते हुए उनके एक दूसरे चेले ने, जो उसी गांव का बाशिंदा था, उन्हें अपने चेलों के साथ घर पे खाने पे बुलाया। और जब वे खाने के लिए उस घर में गए, प्रभु यीशु के चेलों ने बिना हाथ धोए खाना खाना शुरू कर दिया। बेचारे भूखे होंगे, कई किलोमीटर की, कई दिनों की यात्रा पूरी करके वे आए होंगे। जैसे ही उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया, जो आस पड़ोस के लोग प्रभु को देखने के लिए आए थे, उन्होंने आपस में भुनभुनाना शुरू कर दिया। देखिए, चेले एक तरफ खाना खा रहे थे और दूसरे लोग दूसरी तरफ भुनभुना रहे थे। और वे क्या बातें कर रहे थे कि ये कैसे लोग हैं जो बिना हाथ मुंह धोए खाना खाना शुरू कर दिए। उन्हें हाइजीन की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन बात यह थी कि उनके समाज में उन दिनों यह एक ट्रेडिशन था। यह उनके ट्रेडिशन की बात थी कि कोई भी व्यक्ति यदि बाहर से आए तो बिना हाथ धोए, बिना शुद्धिकरण किए हुए घर के अंदर जाकर खाना नहीं खा सकता था। और प्रभु यीशु के चेलों ने शुद्धिकरण की इस प्रथा को बिना पूरा किए खाना खाना शुरू कर दिया था। तो इसलिए वे सभी लोग जो वहां पे थे, इस बात से खफा होकर आपस में भुनभुनाने लगे और उन्होंने प्रभु से कहा कि ये कैसे चेले आपने रखे हैं, आप उन्हें क्यों कुछ चीजें बताते क्यों नहीं है, उन्हें कुछ सिखाते क्यों नहीं है। वे बिना शुद्धिकरण किए हुए, बिना अपने आप को धोए हुए खाना खाना शुरू कर दिए। तब प्रभु ने उन्हें कहा कि मनुष्य को केवल बाहरी रूप से नहीं अपितु अंदर से शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य को केवल बाहरी रूप से नहीं अपितु अंदर से शुद्ध होना चाहिए।
2: In a voice, a radio.
1: प्यारे दोस्तों, ये एक छोटा सा वाकिया है, लेकिन इससे हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलती है। शुद्धिकरण केवल बाहरी रूप से करने से वो शुद्धिकरण नहीं कहलाता है, वो केवल स्वच्छता कहलाती है, वो एक हाइजीन का प्रोसेस बन जाता है, लेकिन शुद्धिकरण उसे हम नहीं कह सकते। इसके तीन पड़ाव है। यदि हम ध्यान से देखें तो शुद्धिकरण के तीन पड़ाव हम सोच सकते हैं। पहले, विचारों का शुद्धिकरण। यदि हमारे विचारों में शुद्धि है तो वह शुद्धि हमारे शब्दों में भी आएगी। विचारों का शुद्धिकरण यानी हम कह सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स। वी हैव टू प्यूरिफाई आवर थॉट्स एंड इंटेंशंस। यदि हमारे विचार, हमारे थॉट और इंटेंशन शुद्ध है, तो उसका अगला पड़ाव जो है, हमारे शब्द वे भी शुद्ध हो जाएंगे। विचारों का शुद्धिकरण हमारे शब्दों के

0: Our intentions, purification of words, and then purification of actions. और जब हमारे actions pure हो जाएंगे, तो हम अपने actions के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा प्रेम बांटते फिरेंगे। और वहाँ पर हम देख सकेंगे कि किस प्रकार हम एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहते हैं। वहाँ पर सभी प्रकार की कमियों को हम भूल जाएंगे। यदि किसी के अंदर कोई कमी भी है, तो हमारे कार्यों, विचारों और शब्दों की शुद्धि होने के कारण हम उस कमी को अच्छाई में बदल सकते हैं। हम अपने उस भाई को या बहन को उस कमी से उभरने के लिए मदद कर सकते हैं। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने विचारों में, अपने शब्दों में और अपने आचरण में शुद्धता लाएं, ताकि प्रेम के हम साक्षी बन सके। तो ये थी दास्ताएं मोहब्बत इंडिया दिल से में। कल फिर मिलेंगे एक नई दास्तां के साथ, एक नए विचार के साथ, जो हमें मोहब्बत में, प्रेम में, प्यार में आगे बढ़ते रखे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए आपके दोस्त, आपके होस्ट रॉबिन्सन को। बाय बाय।
1: इंडिया दिल से।

0: दिल से।
1: हेलो एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू रेडियो इन अ वॉइस। आई एम सुनील हियर विद यू। वन रेनी आफ्टरनून आई वाज ड्राइविंग अलोन वन ऑफ द मेन स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन, टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस नेसेसरी व्हेन द रोड्स आर वेट एंड स्लिक। सडनली माय फ्रेंड ब्लेसी spoke up from her relaxed position in the front seat. I'm thinking of something. This announcement usually meant that she is hungry and need to get into some restaurants. But today she looked a bit serious. "What are you thinking?" I asked. I was eager to hear something other than "I am hungry"